0: આપ આકાશવાણીનું રાજકોટ કેન્દ્ર સાંભળી રહ્યા છો. સમાચારનો સમય થતો આવે છે બરાબર 6 વાગ્યે, પ્રથમ હિન્દીમાં, ત્યારબાદ 6:05 અંગ્રેજીમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે કરીશું.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં વૈષ્ણવી. भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए. श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई.
2: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं. अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे. कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया. राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे. रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है. सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी. साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी. इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउआ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की. बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे. ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह

0: और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Jan Shakti Party, Ram Vilas, and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. In a shocking incident, Chandranath Rath, close aide of BJP leader Shubhendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram, North 24 Parganas district of West Bengal. According to reports, miscreants on motorbikes opened indiscriminate fire at his car in Doharia last night. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Behra, also sustained multiple bullet injuries and has been shifted to a Kolkata hospital in critical condition. Hospital authorities confirmed two bullets pierced through Chandranath's heart and one hit his abdomen, while Buddhadev suffered injuries to his chest, abdomen and arm. Sources say 8 attackers on 4 bikes followed the car and ambushed it, allegedly acting on prior information about his route. Defence Minister Rajnath Singh and the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan will grace the second edition of Joint Commanders Conference in Jaipur today. The two-day conference on the theme Military Capability in New Domains assumes significance as it coincides with the first anniversary of Operation Sindoor. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tu Lam at Rashtrapati Bhavan yesterday evening. She also hosted a banquet in the honor of the visiting dignitary. The president said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. Yesterday, India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tu Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर मध्ये डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजाः चिकित्सा विनियमनम् सार्वजनिक क्षेत्रस्य लेखा परीक्षा डिजिटल व्यवहारः संस्कृतिः पर्यटनम् इत्यादिषु बहुविध क्षेत्रेषु सन्धयः कृताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अथ वियतनाम राष्ट्रपतिः टोलाम इत्यनयोर मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं सन्धि विज्ञप्तिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसम्बन्धं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः।
1: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
0: राष्ट्रपति ही द्रौपदी मुर्मू ह्यः सायं राष्ट्रपति भवने स्वस्य वियतनाम समकक्षस्य टोलाम इत्यस्य स्वागतं कृतवती। आगन्तुकस्य गणमान्यस्य सम्मानार्थं सा भोजमपि आयोजितवती। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारत वियतनाम सम्बन्धस्य उन्नत व्यापक रणनीतिक सहयोगस्य अभिवर्धनम् न केवलं द्विपक्षीय सहकार्यस्य गतिं प्रदास्यति अपितु क्षेत्रे शान्ति समृद्धौ अपि योगदानं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान अद्य जयपुरे संयुक्त सेनापति सम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणस्य शोभां वर्धयिष्यतः। द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अस्य मुख्य विषयो वर्तते नूतन क्षेत्रेषु सैन्य क्षमता इति। एकस्मिन् उद्वेगकर घटनायां पश्चिम बंगालस्य उत्तर चतुर्विंशति परगण मण्डलस्य मध्यग्रामे भाजपा दलस्य नेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य निकट सहायकः चन्द्रनाथ रथः अज्ञात आक्रमणकारिभिः भुशुण्डिकया प्रहृतः। समाचारानुसारं गतरात्रौ दोहरिया नगरे मोटरबाइक चालकाः दुष्टाः आततायिनः तस्य कार्यानस्य उपरि यथेच्छं गोलिका प्रहारं कृतवन्तः। चन्द्रनाथं तत्क्षणमेव स्थानीय चिकित्सालये प्रेषितः परन्तु सः मृतः इति घोषितः। तस्य चालकः बुद्धदेव बेरा अपि गोलिकाभिः बहुधा व्रणितः अथ गंभीरस्थितौ कोलकाता चिकित्सालये स्थानान्तरितः वर्तते। बिहारस्य मुख्यमंत्री साम्राट चौधरी अद्य तस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पटनानगरस्य गांधी मैदानम् इत्यत्र अद्य मध्याह्ने 12 वादने आयोजिष्यमाणे शपथग्रहण समारोहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह एनडीए इति राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः च भागं गृहीष्यन्ति। अस्माकं संवाददात्रा सूचितं यत् पूर्व सर्वकारे अनुसृतस्य सूत्रस्य आधारेण मंत्रिमंडल विस्तारः क्रियते। प्रायः 15 भाजपा विधायकाः 14 जेडीयू विधायकाः मंत्रिरूपेण शपथं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः परमाबीरो इत्यत्र तस्य सूरीनाम समकक्षेण मेलविन बोबा इत्यनेन सह मिलितवान्। भारतीय सूरीनाम प्रतिनिधि मंडलानि नवम संयुक्त आयोग सभायां भारत सूरीनाम संबंधानां व्यापक समीक्षायाः आयोजनं कृतवन्तः। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलेन पंजाब किंग्स दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर मध्ये लखनऊ नगरस्य भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ तत्व चिकित्सा उत्पाद विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सुरक्षा व्यापार स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत

0: इसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए नए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। फ्रांस ने हुर्मुज जलडंभ मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद हुर्मुज जलडंभ मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन,
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, 2 ministers from Lok Janashakti Party, Ram Vilas, and 1 each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. Most of the positions in the cabinet are likely to be given to familiar faces from BJP and JDU. However, a few new faces may also be included. From JDU, the name of Nishant Kumar is being discussed. In a shocking incident, Chandranath Rath, close aide of BJP leader Shubhendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram, North 24 Parganas district of West Bengal. According to reports, miscreants on motorbikes opened indiscriminate fire at his car in Doharia last night. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Behra, also sustained multiple bullet injuries and has been shifted to Kolkata Hospital in critical condition. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tô Lâm at Rashtrapati Bhavan yesterday evening. She also hosted a banquet in the honour of the visiting dignitary. The President said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. Yesterday, India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tô Lâm in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi and

0: શ્રોતાઓ, સમાચારનો સમય થતો આવે છે. બરાબર 8 વાગે પ્રથમ હિન્દીમાં અને 8:15 અંગ્રેજીમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે કરીશું.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સે સમાચાર પ્રભાત કે સાથ મેં ફરહત નાઝ. और अब मुख्य समाचार. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे. देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या. अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब. फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया. और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा. और अब समाचार विस्तार से. केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं. यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे. केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरुलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है. भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है. इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है. तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी. स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है. पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा. राज्य भाजपा अध्यक्ष शमीर भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ

0: अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर सिंह महतो भी मौजूद रहे। श्रमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं, तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई में सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नई 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें

0: राधा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोरबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है। हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। यह मैच शाम

0: सात बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: फरद पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का एक वर्ष, जल थल नब में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का एक साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमरीका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी टू एक्सपैंड हिज कैबिनेट टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमंग होस्ट ऑफ डिग्निटरीज टू अटेंड स्वेरिंग इन सेरेमनी इन पटना। Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobbis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Janashakti Party, Ram Vilas, and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram today to elect their leader. Congress-led UDF, which secured 104 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional charge of Tamil Nadu, is in Chennai today. More from our correspondent.
3: In Keralam, meeting of the newly elected legislators of Congress will be held today morning at Thiruvananthapuram. In the meantime, ASCC observers who reached last night at Thiruvananthapuram will continue discussions with the individual MLAs. On the other hand, informal discussions between various constituents of UDF is also progressing on the ministerialship position. Congress sources hinted that an immediate decision will be taken regarding the chief ministership and approach the governor to form government. Nidhi M. Palluruthi, Agash.

एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।

0: आकाशवाणी राजकोट हमारे हिंदी कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है निधि मेहता से उनका कविता पाठ।
1: कविता है एक दिन ऐसा आएगा, जो हौसलों के बारे में है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी सफल हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी सफल हो जाएगा, नगमे तेरे भी ये जमाना दोहराएगा, नगमे तेरे भी ये जमाना दोहराएगा, अल्फाजों से अपने तू मर के भी जी जाएगा, अल्फाजों से अपने तू मर के भी जी जाएगा, कदम तू अपने बढ़ाता चल लागे, सफर शुरू किया है तो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा, सफर शुरू किया है तो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा, बुलंद रख अपने हौसलों की उड़ान को, बुलंद रख अपने हौसलों की उड़ान को, आसमान अपना कभी तू भी छू पाएगा, कर्मों पे अपने कर ले तू खुद यकीन, कर्मों पे अपने कर ले तू खुद यकीन, कोशिशों से अपनी कमाल तू भी कर जाएगा, भले आज वहां कोई और है, भले आज वहां कोई और है, कल कोई और आएगा, उनका वक्त आया है तेरा भी दौर आएगा, उनका वक्त आया है तेरा भी दौर आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी सफल हो जाएगा, जब तू भी सफल हो जाएगा। मेरी अगली कविता है प्यार। प्यार कैसा है उसके बारे में। तुमसे कितनी है चाहत वो तो मेरे लिए भी राज है, तुमसे कितनी है चाहत वो तो मेरे लिए भी राज है, मेरी मोहब्बत की हदों का मुझे भी कहाँ कोई अंदाज है, मेरी मोहब्बत की हदों का मुझे भी कहाँ कोई अंदाज है, अच्छा या तेरी बया करने को काफी कहाँ कोई अल्फाज है, अच्छा या तेरी बया करने को काफी कहाँ कोई अल्फाज है, तू कल भी सबसे खास था तू आज भी सबसे खास है, तू कल भी सबसे खास था तू आज भी सबसे खास है, तेरे प्यार का मेरे सर पे सजा जो ताज है, किस्मत पे मेरी मुझे हद से ज्यादा नाज है, किस्मत पे मेरी मुझे हद से ज्यादा नाज है, कहानी तेरी और मेरी किसी हीर रांझे से कम तो नहीं, कहानी तेरी और मेरी किसी हीर रांझे से कम तो नहीं, वो इतिहास थे तो हम वर्तमान है, वो इतिहास थे तो हम वर्तमान है, सारी बातें और शिकायतें तुझसे ही मेरी, सारी बातें और शिकायतें तुझसे ही मेरी, तू साथी और तू ही हमराज है, तू साथी और तू ही हमराज है, तुमसे कितनी है चाहत वो तो मेरे लिए भी राज है। मेरी अगली कविता है एहसान अंधेरों का। अंधेरों को बदनाम करते हैं पर अंधेरों का भी एहसान होता है, उसके बारे में एक कविता। आंखों में नमी सी है कहीं कुछ कमी सी है, आंखों में नमी सी है कहीं कुछ कमी सी है, अपनों की महफिल में ये शख्सियत अजनबी सी है, अपनों की महफिल में ये शख्सियत अजनबी सी है, अंधेरों को खामखा ही बदनाम करते हैं लोग, अंधेरों को खामखा ही बदनाम करते हैं लोग, इसी के सहारे तो ये जिंदगी थमी सी है, इसी के सहारे तो ये जिंदगी थमी सी है, उजालों में तो वरना खुल ही जाते राज सारे, उजालों में तो वरना खुल ही जाते राज सारे, जिन जख्मों की रियासत मन में जमी सी है, जिन जख्मों की रियासत मन में जमी सी है, अब तो लगे अपनों की मुस्कान भी झूठी, अब तो लगे अपनों की मुस्कान भी झूठी, और हर शब्द लगे जैसे कोई अग्नि सी है, और हर शब्द लगे जैसे कोई अग्नि सी है, उनकी हर मंजिल है कहानी मेरे दर्द की, उनकी हर मंजिल है कहानी मेरे दर्द की, हर कहानी में कोई अधूरी दास्ता दबी सी है, हर कहानी में कोई अधूरी दास्ता दबी सी है, समझ न पाएगा कभी कोई मेरे जज्बातों को, लबों पे प्यारी सी ये मुस्कान जो सजी सी है, लबों पे प्यारी सी मुस्कान जो सजी सी है, किसे खबर यहाँ बेहाल पड़ी जिंदगी में, किसे खबर यहाँ बेहाल पड़ी।

0: जिंदगी में मच गई कितनी ज्यादा खलबली सी है, मच गई कितनी ज्यादा खलबली सी है। राजे मोहब्बत सुनाए किसको, अल्फाज नहीं बया करने को। राजे मोहब्बत सुनाए किसको, अल्फाज नहीं बया करने को। खामोशी इस कदर रूह में हमारी बनके जहर फैली सी है। खामोशी इस कदर रूह में हमारी बनके जहर फैली सी है। आंखों में नमी सी है, कहीं कुछ कमी सी है। अपनों की महफिल में ये शख्सियत अजनबी सी है। मेरी अगली कविता है, हर बेटी को कुछ कहना है। तो क्या कहना है, ये हर बेटी से कहना है बस ऐसे तुझको रहना है। ये हर बेटी से कहना है बस ऐसे तुझको रहना है। राम सा कोई मिल जाए तो सीता सी तू बन जाना। राम सा कोई मिल जाए तो सीता सी तू बन जाना। पर मिले कहीं कोई रावण तो तू दुर्गा काली बन जाना। पर मिले कहीं कोई रावण तो तू दुर्गा काली बन जाना। जो सम्मान नहीं कर सकता तेरा उसके निकट तू मत जाना। जो सम्मान नहीं कर सकता तेरा उसके निकट तू मत जाना। अपनी मान और मर्यादा की रक्षक तू ही बन जाना। अपनी मान और मर्यादा की रक्षक तू ही बन जाना। एक तेरा कर्तव्य है तो दूजा तेरा अधिकार भी है। एक तेरा कर्तव्य है तो दूजा तेरा अधिकार भी है। और फिर अधिकार से बढ़कर यही समय की मांग भी है। और फिर अधिकार से बढ़कर यही समय की मांग भी है। ये हर बेटी से कहना है बस ऐसे तुझको रहना है। बस ऐसे तुझको रहना है। मेरी अगली कविता है क्यों। माँ और बेटी के बीच में चल रहे सवाल जवाब है। बेटी माँ से पूछती और माँ के जवाब है, समझ नहीं आता माँ मुझको क्यों बेटियां पराई कहलाती है। समझ नहीं आता माँ मुझको क्यों बेटियां पराई कहलाती है। आपका ही तो अंश होती है फिर क्यों उसे घर से भगाई जाती है। फिर क्यों उसे घर से भगाई जाती है। बिठा के पास तब माँ बेटी को समझाती है, क्योंकि बेटा कितना भी प्यार लुटा दे तुझ पे एक दिन तो ऐसा आता है जब वो किसी और के घर चली जाती है। दुनिया का दस्तूर यही है हर बेटी निभाती है। दुनिया का दस्तूर यही है हर बेटी निभाती है। और सदियों से संसार में यही रीत चली आती है। सदियों से संसार में यही रीत चली आती है। छोड़ के आंगन बाबुल का बेटी साजन के घर जाती है। छोड़ के आंगन बाबुल का बेटी साजन के घर जाती है। कैसे जा पाऊंगी माँ सुनकर भी मेरी तो आंखें भर आती है। कैसे जा पाऊंगी माँ सुनकर भी मेरी आंखें भर आती है। कुछ नहीं बेटा कहके माँ बेटी को बहलाती है। कुछ नहीं बेटा कहके माँ बेटी को बहलाती है। इतना नहीं मुश्किल बेटा पता ही नहीं चलता कब वो उस घर की हो जाती है। इतनी मोहब्बत मिलती है कि उसके रंग में ही रंग जाती है। जो था पराया कल तक वो घर उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। जो था पराया कल तक उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। पर कुछ ही समय में बेटी को सच्चाई पता चल जाती है। पर कुछ ही समय में बेटी को सच्चाई पता चल जाती है। भेजने को ससुराल हर माँ ऐसे ही फुसलाती है। भेजने को ससुराल हर माँ ऐसे ही फुसलाती है। बेटी जैसी कहने वालों की कोई बात समझ नहीं आती है। बेटी जैसी कहने वालों की कोई बात समझ नहीं आती है। सब कुछ छोड़ा जिसकी खातिर उसके लबों पे भी चुप्पी सी लग जाती है। सब कुछ छोड़ा जिसकी खातिर उसके लबों पे भी चुप्पी सी लग जाती है। माँ तू कहती थी ऐसी तो यहाँ कोई मोहब्बत मिल ना पाती है। माँ तू कहती थी ऐसी तो यहाँ कोई मोहब्बत मिल ना पाती है। पराई हूँ मैं यहाँ भी और वहाँ भी। पराई हूँ मैं यहाँ भी और वहाँ भी। तो फिर सही पता कहाँ उसका ये कोई बेटी समझ नहीं पाती है। तो फिर सही पता कहाँ उसका ये कोई बेटी समझ नहीं पाती है। कितना भी कर ले माँ सबके मन को वो जीत नहीं पाती है। कितना भी कर ले माँ सबके मन को वो जीत नहीं पाती है। गलती छोटी से छोटी यहाँ अपराध बड़ा बन जाती है। गलती छोटी से छोटी यहाँ अपराध बड़ा बन जाती है। औरों की गलती छुप जाती है हमारी सरेआम छप जाती है। औरों की गलती छुप जाती है हमारी सरेआम छप जाती है। तेरी बातें सच होती शायद लेकिन ऐसा नहीं माँ। तेरी बातें सच होती शायद लेकिन ऐसा नहीं माँ। तभी तो हर बेटी पराई होने से कतराती है। तभी तो हर बेटी पराई होने से कतराती है। बेटी नहीं समझे चाहे शिकवा नहीं उसे। बेटी नहीं समझे चाहे शिकवा नहीं उसे। लेकिन किसी की तो बेटी है बहू भी। लेकिन किसी की तो बेटी है बहू भी। बात ये दुनिया को क्यों समझ नहीं आती है। बात ये दुनिया को क्यों समझ नहीं आती है। माँ बाप जैसी मोहब्बत यहाँ नहीं मिल पाती है। माँ बाप जैसी मोहब्बत यहाँ नहीं मिल पाती है।
1: हमारे हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निधि मेहता से उनका कविता पाठ। ये प्रसारण आप आकाशवाणी राजकोट से सुन रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। भारतीय सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश की दृढ़ प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला और देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे भी मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डिगॉल विमान वाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्ध पोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

मीडियम वेव 370.3 मीटर से लेकर 810 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी नो आ राजकोट केंद्र छे। समय छे फिल्म संगीत नो कार्यक्रम सांभळवानो। कार्यक्रम छे मनोरंजन। श्रोताओ आजे छे गीतकार, संगीतकार, नृत्य निर्देशक अने अभिनेता प्रेम धवन नो स्मृति दिवस। कार्यक्रम ना प्रारंभ में सांभळीए एवी केटलीक फिल्मों गीतो के जेना गीतों ना रचयिता छे प्रेम धवन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: આકાશવાણીનો આ રાજકોટ કેન્દ્ર શ્રોતાઓ સાંભળી રહ્યા છે. મનોરંજન કાર્યક્રમનો દોર ચાલુ રાખીએ અને સાંભળીએ અન્ય કેટલાક યાદગાર ફિલ્મી ગીતો. હવે પછીના ગીતને સ્વર મળ્યો છે અરિજિત સિંહનો. અમિતાભ ભટ્ટાચાર્ય લિખિત ગીતને સંગીતે માઢ્યું છે પ્રીતમે. ફિલ્મનું નામ યે જવાની હૈ દીવાની.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ओ लाल पेटा वाला वो सोमा भाई ना थाला वो करतन काका थाला वो बूढ़ी बंडी वाला ओ लाल पेटा वाला वो सोमा भाई ना थाला।

0: है, कोई कुछ कर रहा, तो मैं छोटा रहा होगा मेरे ख्याल से 3-4 साल का
1: जी,
0: तब से खेलते खेलते पापा बुला लेवे कि बेटा आओ जरा तुम भी कुछ बजाओ, तुम भी देखो धा कैसे बजता है, घे कैसे बजता है, ना कैसे बजता है, तीटे, तो ऐसे गेम गेम की तरह उन लोग खेलते हुए हमको सिखाते थे
1: जी।
0: तो हम लोग उसको लेकर के चलो ता बजाओ, तो ताई खाली बजाते रहो 10 मिनट तक, 15 मिनट तक,
1: अच्छा,
0: चाहे खाली घे बजाओ तो घे घे घे बजाए जा रहे हैं, घे घे करो तो उसी को किए जा रहे हैं, बोले 10 मिनट तक यही करो।
1: अच्छा,
0: फिर हम लोग थोड़ा बोर हो जाते थे, फिर भागते थे, बोले कि नहीं अभी तीटे बाकी है तो फिर तीटे करो, तो 2-3 बोल सिखा दे फिर भेज दे,
1: अच्छा।
0: जाओ खेल के आओ। फिर उसके बाद
1: तो ये तालीम तो शुरू हुई घर से,
0: घर से।
1: तो इसके अलावा और कहीं आपने तालीम ली है?
0: उसके बाद काफी दिनों के बाद फिर हमारी जब बहन की शादी हुई तो हमारे जीजा जी भी बहुत बड़े तबला वादक थे, वो भी ऑल इंडिया रेडियो में थे।
1: अच्छा,
0: तो उनके साथ हम चले गए।
1: क्या बात है।
0: वो जो कि इनके शिष्य थे अनोखे लाल जी के।
1: अच्छा,
0: तो हम वहाँ चले गए उनके
1: तो
0: पास।
1: कहाँ गए आप?
0: हम दार्जिलिंग गए थे, दार्जिलिंग के पास कर्सियांग रेडियो स्टेशन में वो पोस्टेड थे।
1: अच्छा,
0: तो हम वहीं चले गए कि दोनों जने, जीजा जी बोले कि तुम्हारी बहन अकेले रहेगी तुम भी चलो
1: जी,
0: तो मैं भी छोटा था साथ में चला गया उनके साथ। तो वहाँ उनके पास फिर सीखने लगा।
1: अच्छा।
0: जो कि पंडित गोपाल मिश्रा टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट थे।
1: तो आपने बनारस से दार्जिलिंग का सफर किया, फिर आप ये बताइए मुझे कि जो बनारस घराना है उसकी क्या खासियत?
0: बनारस घराना देखिए, ये पखावज का ही पुत्र मानते हैं, क्योंकि खुला बाज बजता है इसमें
1: जी,
0: जो भी बोल बजता खुला ही बजता है।
1: हाँ।
0: दो प्रकार के बाज होते हैं, एक बंद बाज होता है एक खुला बाज होता है। बंद बाज जो होता है दिल्ली में बजता, किनारे की बात होती है, ये बंद बाज हुआ।
1: ओके,
0: अब बनारस घराने का

0: जैसे कि एक खुलेबाज का एक मैं आपको स्तुति परण सुना रहा हूँ, एक कार्यक्रम का शुरुआत हो ही रहा है तो गणेश जी की स्तुति परण आपको बोल के सुना रहा हूँ, फिर बजाऊंगा, जो कि मिश्र जाति में है। नाधीद हिन्ना नाधीद, पांच प्रकार की जातियां होती है जिसमें से मिश्र जाति में सुना रहा हूँ आपको। नाधीद हिन्ना नाधीद हिन्ना ना तीन तिन्ना तक तक दिवधा श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान गजान नम त्रिगणागी धैर तथा दीन धृतक लंबोधर एक दंत धा कृतक लंबोधर एक दंत धा कृतक लंबोधर एक दंत धा। जैसे कह रहे गणेश जी का वर्णन कर रहे हैं, किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए गणेश का नाम लेते हैं पहले, तो गणा नाम धा श्रवण सुंदर, तुम कितने सुंदर हो, धा श्रवण सुंदर, धा श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाम गजान नम,
1: क्या बात है।
0: तो उसका पूरा

0: दंतदा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो बनारस घराना है आपके वादन को कैसे प्रभावित करता है?
0: बनारस मतलब बना हुआ रस।
1: क्या बात है,
0: अंग्रेजी में अगर कहेंगे
1: इसको, क्या डेफिनेशन?
0: सेल्फ मेड जूस।
1: हाँ, हाँ।
0: सब प्रकार के जूस को अगर आप मिक्स फ्रूट जूस पीजिए,
1: हाँ,
0: तो बनारस ऐसा है।
1: क्या बात है,
0: वहाँ आध्यात्मिक भी मिलेगा, खाने पीने की आनंद है, गंगा किनारे बैठे, हर तरह का वहाँ पे आनंद है।
1: क्या बात है?
0: आप बड़े से बड़े होटलों में भी जाकर के 5-स्टार कॉन्टिनेंटल भी खाना खा सकते हैं, और वहाँ का जो होता है कचौड़ी और जलेबी और सब, वो सब भी खाना के लिए मिलेगा आपको।
1: तो ये आपके तबला वादन में कैसे प्रभाव?
0: हाँ, यस, तबला वादन अगर बनारस के आप शिष्य है घराने के, तो आप किसी के साथ भी बजा सकते हैं, चाहे सोलो हो, संगत। संगत भी कई प्रकार के होते हैं, जो कि सब जो घराने के लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है तकलीफ पड़ेगा, जो कि डांस में बजाना।
1: हाँ।
0: डांस में बजाने के लिए, कथक नृत्य में बजाने के लिए,
1: हाँ,
0: खुला और जोरदार वादन चाहिए।
1: ओके।
0: जो सबसे कठिन होता है, और बनारस घराने का खुला बाज का ताल है।
1: अच्छा,
0: तो आराम से लोग बजाते हैं।
1: अच्छा, तो ये जो तबला वादन में आपको तकनीक के अलावा आपके गुरुओं ने कौन से महत्वपूर्ण आपको पाठ सिखाए तबला वादन के?
0: बनारस घराने का नियम है कि छंद, परण, पराल, ये सब खास चीजें हैं
1: जी।
0: और मगर तबले अगर सच में आपको सीखना है, तबला वादन किसी भी घराने में करना है, खाली बनारस घराने नहीं, किसी भी घराने, तो कायदा, कायदा मतलब डिसिप्लिन
1: जी।
0: कायदे का अगर आपको अभ्यास नहीं किया,

0: तो आपका अंदर का तबला का जो है बोलो का निकास, शुद्धता, तैयारी, फिर उससे आगे भी बढ़ने के लिए फिर रेला चाहिए होता है। कायदे के बाद आता है रेला,
1: रेला
0: तो रेला से स्पीड पकड़ाती है रेल की तरह।
1: अच्छा,
0: जो देखिए
1: क्या बात, क्या बात,
0: चल रहा है ये,
1: बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है।
0: इस ट्रेन का आनंद देता है ऐसे,
1: सही में, सही में। तो अब हम आते हैं आपके आकाशवाणी की सफर की ओर।
0: ये तो सबसे प्रिय सब्जेक्ट किया आपने।
1: हम आपको बताना चाहते हैं कि इस साल आकाशवाणी अपने प्रसारण का 90 साल का ये जो जश्न मना रहे, तो इसी मौके पर आपको हमने आमंत्रित किया है। तो आपका आकाशवाणी का सफर कैसे रहा? सबसे पहला परफॉर्मेंस और आपने आकाशवाणी में सबसे पहले कदम कब रखा?
0: पहली बात तो इस 90 वर्ष के साल पूर्ण होने के विषय में मैं कुछ कहूंगा, क्योंकि देखिए इतने साल हमने कार्य किया, नौकरी किया यहाँ पे, मगर मैं इसको मंदिर समझता हूँ। कला जहाँ होती है, ईश्वर के अंदर जो विराजे उसे स्वर बोलते हैं।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: तो हम लोग कलाकार जो होते हैं एक साधक होते हैं, तो जिस स्थान पे बैठ जाते हैं वो हमारे लिए मंदिर हो जाता है, और साज हमारा भगवान हो जाते हैं।
1: जी, हमने आपको यहाँ परफॉर्म करते हुए देखा है,
0: इसीलिए कह रहे हैं कि ये हम लोग के लिए मंदिर है। तो मैंने सदा आकाशवाणी को मंदिर की तरह ही पूजा है और हमेशा पूजूंगा। इस उपलक्ष्य में आपने हमको बुलाया तो दो शब्द कहूंगा मैं। आदरणीय उपस्थित सभी महान भाव को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन मेरे लिए ही नहीं, हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा हुआ है। आज का दिन हम महान संस्था के 90 वर्ष पूर्ण होने के उत्सव मना रहे हैं, जिसे हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। एक ऐसी आवाज जिसे देश के कोने कोने को जोड़, संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोया और अनगिनत प्रतिभाओं का पहचान दी है।
1: पंडित जी, ये बताइए कि सबसे पहला परफॉर्मेंस आपने आकाशवाणी में कब दिया?
0: सबसे पहला प्रोग्रामिंग तो हमने अपने बड़े भाई के साथ बजाया था। वो कथक डांसर थे पंडित अर्जुन मिश्रा
1: जी,
0: बहुत अच्छे थे। उनके साथ बहुत छोटा था, 8-10 साल का था। अच्छा। तब बजाया था मैंने। और आकाशवाणी में एक तो हमने पहला जो बी ग्रेड हमको मिला था वो कर्सियांग रेडियो में हमने बजाया था।
1: अच्छा, दार्जिलिंग में।
0: वो भी आई थिंक 75 की, 70 एग्जैक्ट याद नहीं, 73 से 75 होगा
1: जी। तो आपने क्या बजाया था, आपको याद है?
0: ओ, मैंने एक सोलो बजाया था।
1: क्या बात है।
0: और एक मुझे संगत भी दिया गया था। चलो,
1: हमारे श्रोताओं के लिए एक बिल्कुल प्रयत्न कीजिए प्लीज।
0: मैं एक बनारस घराने का धीक धिन्ना का कायदा सुना रहा हूँ आपको, जो कि धीक धिन्ना तेरे के धिन्ना धाग न धीक धीनाड़ा तीक तिन्ना तेरे के धिन धागे न धीक धीनाड़ा, बहुत फेमस है।

0: इस प्रकार से हम लोग विस्तार करते हैं इसका। जब लहरा होता है तो बहुत घंटों घंटों हम लोग बजाते रहते हैं।
1: क्या बात है।
0: एक बोल को लेकर के खाली उसी को अलग अलग प्रकार से उसमें परिवर्तन होते रहता है।
1: तो एकल प्रस्तुति के लिए ये जो पुष्कर, कायदा, रेला, आपने जो बोला टुकड़ा, चक्रधर में से आप किसे चुनेंगे?
0: देखिए हर चीजों की अलग खुशबू होती है, मगर तो विस्तार के लिए अगर आप कहिए तो कायदा को बड़े से बड़ा खोला जाता है। उसके बाद होता है क्या नाम है, रेला होता है
1: जी।
0: हमारे बनारस घराने में उठान से शुरुआत होता है। उठान मतलब उठने का अंदाज।
1: अच्छा।
0: जब भी कोई आता है तो उसको वेलकम करने के लिए, अरे आइए आइए, उतरते उठने का, फिर बैठाना, उनको कुछ ला के देना अलग अलग
1: जी।
0: तो वो उठने का अलग अलग अंदाज होता है।
1: ओके।
0: जैसे

0: इसे संगीत में कैसे रखते हैं वो भी बताइए, और ये जो गणित है उसके पीछे का, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको बहुत आनंद हुआ सुन करके। देखिए, दुनिया में पहली बात तो लय,
0: लय
1: लय नहीं है तो परलय है
0: जी।
1: परलय का मतलब तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है,
0: विनाश।
1: और आप अभी सारे जनता भी समझ सकते हैं परलय का मतलब क्या हो सकता है,
0: विनाश, विनाश।
1: तो जो भी है लय, हमारी हार्ट बीट है, अगर वो प्रॉपर चल रही है तो सही है
0: जी,
1: तो हम सब जिंदा है। अगर हार्ट बीट बंद हो गया तो चल गया। अच्छा, उसमें भी गति होती है, तीन प्रकार की गति होती है
0: जी,
1: विलंबित, मध्य और द्रुत।
0: अच्छा,
1: अब विलंबित लय जब से आप शांति से सो रहे हैं तो धीमे धीमे चलता है, थोड़ा हार्ट बीट थोड़ा एकदम नॉर्मल हो जाता है।
0: हाँ।
1: थोड़ा फास्ट काम करने लगते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है।
0: हाँ।
1: तो उसको मध्य लय बोलते हैं,
0: मध्य लय। हाँ।
1: और दौड़ने लगते हैं
0: तो द्रुत।
1: हाँ, जैसे तो द्रुत लय हो जाता, स्लो मीडियम फास्ट, किसी भी चीज की गति की कोई सीमा नहीं होती। फिर उसके बाद आता है जाति, इसमें जातियां वो पांच प्रकार की, एक होता है तीसर जाति, चतुर्थ जाति, खंड जाति, मिश्र जाति और संकीर्ण जाति।
0: अच्छा,
1: वो सब जातियां अलग अलग होती। तो जब किसी अच्छे गुरु के पास कोई विद्यार्थी बैठेगा, सीखेगा, तो कुछ समय के बाद, वो भी कुछ सालों के बाद, वो लोग समझाते हैं।
0: तबला वादन में इस जाति का क्या महत्व होता है?
1: ये बहुत बड़ा महत्व है।
0: हाँ।
1: वो गैर गणित जो आपने पूछा था शब्द ना,
0: हाँ।
1: तो चार में तीन करने को
0: ओके,
1: वो डेढ़ गुण हो गया।
0: अच्छा,
1: उसको तिगुन भी बोल सकते हैं, डेढ़ी तीन आड़ी लय भी बोल सकते हैं।
0: हाँ।
1: चार में पांच करने को खंड जाति बोल सकते हैं।
0: ओके।
1: धीना तीन अधी, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तक तक इट, तक तक इट। अब चतुर जाति, तक दिग तक दिग तक दिग तक दिग, धागी तिलक दिन धा तीन अक दिन।
0: ओके।
1: अब मिश्र जाति, तक इट तक दिम तक इट तक दिम तक इट तक दिम तक इट तक दिम, तितिना दिना दिना तितिना दिना दिना तितिना दिना दिना। फिर संकीर्ण जाति।
0: हाँ।
1: इसी प्रकार से सब जातियां चलती रहती हाँ, हाँ, हाँ। है।
0: तो पंडित जी, ये बताइए कि आपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत दी है, तो अपना ये जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा कीजिए।
1: देखिए, संगत मतलब संग रहने का काम है संगत। किसी भी तबले वादक को समझना चाहिए कि हम उनके साथ संगत कर रहे हैं। बड़े से बड़े कलाकार ने यही समझाया कि आप जब संगत करने के बैठे बैठे हो तो आप साथ साथ चलो।
0: हाँ, तो ये जो आप जो बोल रहे हैं संगत, तो आप कैसे तय करते हैं कि आप संग संग चल रहे हैं? हाँ।
1: तबला वादक के लिए संगत करना
0: हाँ।
1: सबसे कठिन कार्य है।
0: हाँ। क्योंकि
1: वो दो सामने वाले आते तो पूरा तैयारी करके आते हैं
0: जी।
1: आपको एक घटना बताऊं, मैं यहाँ एकदम यंग था, मैं जो कि यहाँ पे बहुत बड़े सितार वादक बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, मतलब कि बहुत फेमस विख्यात सितार वादक है। तो उनके साथ मुझे बजाने का मौका मिला, इसी स्टूडियो में आए। तो हम यहाँ स्टाफ पे थे।
0: हाँ।
1: तो हम तबला लेके बैठ के तो देखा मुझे।
0: हाँ।
1: मैं छोटा था काफी
0: जी।
1: तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से प्रेम से मिले।
0: हाँ।
1: हमने भी तबला में मिलाकर शुरू हो गया। अब वो बहुत तैयार भी बजाते थे, लयदार थे, ही सब कुछ था। अब झाला का इतना गति चला गया, अब बढ़ते जा रहा है हम लोगों का, और मैं आराम से बैठा हुआ जाए जा रहा हूं मैं। तो थोड़ा देर के बाद अचानक तार टूट गया। खत्म हाँ। होने के बाद प्रोग्राम बोले, यार तुम इतना तैयार बजाते, हमको पता ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: लेकिन बुद्धादी जी के मुखर्जी हाँ। के साथ कोई तबला वाला जल्दी बजाने के लिए तैयार नहीं होता था।
0: ओके।
1: तो ऐसे सीखने के लिए मिलता हाँ। है। तो हाँ। जो सामने वाले को पसंद आ गया हाँ। वही हमारी वाहवाही है।
0: हाँ।
1: और नहीं, किसी ने डांट दिया हाँ। कि यार तुम कैसा बजाते हो, तो फिर अपनी बदनामी है।
0: आपने तो एक नाम दिया, लेकिन
1: ऐसे मैंने साहिद परवेज के साथ बजाया है, बिरजू महाराज के साथ कितनी बार बजाया है। हाँ, एक बिरजू महाराज के साथ अहमदाबाद में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था, मैं आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग में था। उनके साथ बजाने के लिए पंडित किशन महाराज जी थे, बुक थे।
0: क्या बात है।
1: तो हमको फोन आया कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि महाराज जी तो क्या नाम किशन महाराज जी रिहर्सल करते नहीं थे। तो बोले कि कुछ आइटमें हैं जो कि तुम थोड़ा के देख लो, तो शाम को शुरू में हम लोग करेंगे, फिर महाराज जी साथ में हो जाएंगे। भी मैं तबला लेके गया तो किशन महाराज जी ने हमको देखा, अरे पूछे, अरे नकुल तुम कैसे?
0: अच्छा।
1: हाँ, बोले चाचा वो क्या नाम है, उन्होंने वो चाचा जी उन्होंने हमको बिरजू महाराज जी ने बुलाया है
0: जी,
1: तो रिहर्सल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है,
0: तुम
1: बैठ रहे हो ना साथ में? बोले कहा, तो अच्छी बात है।
0: Okay.
1: उनके साथ जल्दी दूसरा तबला वाला को बैठना भी जरूरी नहीं है। नहीं, ये प्रोग्राम मेरा सबसे आनंद वाले है, जो कि साथ में एक तबले पे, एक स्टेज पे, एक तबले पे किशन पंडित किशन महाराज जी, और एक तबले पे हम बैठ करके बजाने का सौभाग्य प्राप्त किया, मुझे बहुत आनंद हुआ।

0: बाकी तो सबके साथ जाकिर भाई के साथ सब तक में हम बजा के उठे, जाकिर भाई मतलब सब तरह से जाकिर बजा के उठे हम सुन रहे, सब तरह से ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ, कुमार भाई हो गए सबके साथ।
1: हाँ, आपने तो विदेशों में भी बजाया,
0: बहुत जगह बजाया,
1: जगह पर आप गए।
0: हमको सबसे बढ़िया हमको रशिया में फेस्टिवल ऑफ इंडिया में,
1: अच्छा
0: मॉस्को में, तो पंडित रविशंकर जी थे और वहां का जो फेमस डोहरा प्लेयर था जो कि एक प्रकार का टॉप ग्रेड का सोच लो कि आर्टिस्ट था, जैसे कि फेमस जाकिर हुसैन जी से ऐसे डोहरा वालक था वहां का बजाने वाला। तो रविशंकर जी ने कहा कि ये तबला उसके साथ जुगलबंदी करेगा, क्योंकि मैं थोड़ा वेस्टर्न फ्यूजन भी बजाता था
1: जी,
0: तो उनको मालूम था और कथक में भी बजाता था मैं, और वहां के एक बिरजू महाराज जी की तरह डांसर थी,
1: क्या बात है,
0: फेमस लेडीज, बोले कि आपको डांस में भी बजाना है, इनके साथ डुएट भी बजाना है। तो हमारा नाम सेलेक्ट हुआ था तो मैंने फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दोनों के साथ बजाया था,
1: क्या बात है,
0: जो कि रशियन डांस के साथ कभी देखा ही नहीं था। तब उस लेडी ने हमसे कहा था ये लड़का हाथ से नहीं हार्ट से बजाता है,
1: क्या
0: क्योंकि रशियन डांस कभी देखा है नहीं।
1: अच्छा,
0: ब्रेड के ऊपर शुरू हो गई थी, ब्रेड उसका एनुअल जो होता है उसके ऊपर उसे भाव करना, तो भाव देख के हम लोग बचपन से बजा रहे हैं, महाराज जी के साथ रह रहे सीखा, भाई के साथ रह रहे सीखा, तो ये सब संगीत ऐसे हो गया सब। और माँ सरस्वती की कृपा, गुरु का आशीर्वाद,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो भाई तो सारी जिंदगी सीखने की विद्या है, जितना भी करेंगे कम है।
1: यस, तो ये जो आपने बोला कि जो रशियन डांसर थी, तो मुझे एक सवाल यहाँ याद आ रहा है कि गायक या नर्तक के साथ संगत करना क्या कठिन है?
0: दोनों के अलग अलग महत्व है, डांस के साथ संगत करना ज्यादा कठिन है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उसमें आपकी आईस और लय और तैयारी,
1: अच्छा
0: आंख भी खुला हुआ होना चाहिए, लयकारी भी तैयार होनी चाहिए, और क्या नाम है, हाथों में तैयारी भी होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि आप देखो तुरंत आप साथ में फॉलो कर सको, वो एक बार बोलेंगे कृतक सिंह तो ना तिटे था दा दिन तकड़ दा दिन तकड़ दे दा दिन तक तिटे था तू उनता धा का तिटे था तू उनता धा का तिटे था तू उनता धा।

0: जो भी सुरो तुरंत बजा दो।
1: अच्छा पंडित जी बताइए, आप एक शिक्षक और गुरु के रूप में सक्रिय है, तो आप एक छात्र में सबसे पहले क्या देखते हैं जो तबला वादन सीखना चाहता है?
0: देखिए शिक्षक तो सारी जिंदगी हमको भी सीखना ही है और जो छात्र बनेगा उसको भी सीखना ही है, मगर अब थोड़ा सा सीनियर होने के नाते
1: अब आपको देखते ही पता चला
0: हाँ कि भैया क्या नाम है कि अब लोग सीखने के लिए आ रहे हैं तो चलो हमारा भी दायित्व बनता है क्या कि हमको भी सिखाना इसका, इसी का तो फील्ड में जब हमें तो इसका कार्य करना, तो हमको देखना पड़ता है कि सबसे पहले बच्चे में संगीत के प्रति क्या रुचि है और क्या लगन है, उसके घर वाले का भी कि भाई लड़का को खाली ऐसे टाइम पास के लिए सिखा रहे हैं कि सच में सिखा रहे हैं
1: जी, वो आगे बढ़ना चाह रहा
0: है, आगे बढ़ना चाह रहा है कि नहीं बढ़ना चाह रहा है, उससे बातचीत करते हैं, एक आध दो बार मिलते हैं, समझते हैं, फिर उसको हम लोग रख लेते हैं कि नहीं भैया खाली लड़के को देख के नहीं रख लिया गया, उसको भी देखना पड़ता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा, उसको सपोर्ट है कि नहीं है
1: जी।
0: किसी भी चीज में अगर फैमिली का बैकग्राउंड सपोर्टिव नहीं है
1: जी
0: तो सक्सेस नहीं हो सकता।
1: नहीं आपने ये बहुत महत्वपूर्ण
0: हाँ, कितना भी हम सिखावे, कोई भी गुरु को सिखावे अगर फैमिली उसको बैठने नहीं देते, क्या तुम लेके तबला लेके बैठ गए हो,
1: अगर बच्चे को भेज दिया और फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता,
0: नहीं बढ़ेगा, उसको भी घर में लेके नहीं, हमारे पेरेंट्स को भी पसंद है
1: जी
0: कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं।
1: पंडित जी आजकल कुछ छात्र जो है वो ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, तो
0: बहुत
1: उसके बारे में क्या आप जानते?
0: बहुत, मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ और मैं खुद इस पे कार्य कर रहा हूँ, काफी सालों से मैं सिखाता भी ऑनलाइन। उसमें क्या है कि एक गुरु और शिष्य में सामने सामने, जैसे कि हमारे सामने बैठ के सीख रहे हैं, और इसमें भी आजकल ग्रुप चलने लगा है,
1: क्या बात,
0: एक साथ चार चार पांच पांच बच्चे बैठते हैं और उसको खाली कहने में जूम ऐप होता है, उसमें आपको कहने में एड करना होता है, इतना ही होता है, और एक साथ आप चार बच्चे को, कोई लंदन में बैठा, कोई अमेरिका में बैठा, कि कोई दिल्ली में बैठा, कहीं भी बैठा हुआ है, वो आपसे सीख सकता है। और सबका टाइम, यानी कि व्हीकल लेके जाना गुरु के यहाँ, चाहे पैदल जाना, वो भी टाइम बचता है
1: जी,
0: और आके बैठना, घर बैठे हुए हैं, इतना बजे कॉल क्लास करना है, मैसेज आ गया, फोन आ गया
1: जी,
0: हम भी तबला लेके रेडी
1: है, तो वही है
0: हाँ, शिक्षा तो वही है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उल्टा क्वालिटी उनको अच्छा एक एक चीजों का निकास ज्यादा हम लोग बता सकते हैं, और हम लोगों को भी इससे नॉलेज बढ़ता है कि कोई चीजों का निकास इजीली समझाने के लिए क्या करना चाहिए
1: जी। पंडित जी आजकल तबला फिल्म संगीत का अभिन्न अंग बन चुका है, प्रयोग करते हुए आप शास्त्रीय व्याकरण

0: को वो कैसे बरकरार रखते हैं?
1: देखिए, संगीत आजकल नहीं, प्राचीन काल से हमारे पंडित शामता प्रसाद जी झनक झनक पायल बाजे में
0: जी
1: दीघा दीघा दीघा दीघा दीघा दीघा दीघा दी नाचे मन मोरा मगन दीघा दीदी और सोले में चल धन्नो बसंती के इज्जत का सवाल है। आप सुने तबले का ही साउंड है, पंडित शामता प्रसाद जी बजा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये तो बहुत सालों से बड़े बड़े डायरेक्टर सबने अच्छे अच्छे कलाकार गोपी कृष्ण जी ये सबको यूज किया है और करना चाहिए, इससे संगीत का प्रचार प्रसार होता है।
0: यस, तो क्या आप संगीत कार्यक्रम से पहले कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं?
1: हाँ, संगीत कार्यक्रम के पहले थोड़ा अध्ययन तो करना पड़ता है कि हम किसके साथ बजाने जा रहे हैं, सोलो बजाने जा रहे हैं और संगत करने जा रहे हैं, तो संगत में भी किसके साथ कर रहे हैं। थोड़ा अपने अंदर रहना, अपने आप को समझना और सामने वाले को समझना, किस सुर से गाएगा, कैसा उसका बजाना है, कि नाचना है, कि इंस्ट्रूमेंट है, उस हिसाब के तबला लेना, देखना साज अच्छा है कि नहीं मेरा, वो सब देख करके फिर हम लोग पहुंचते, फिर बैठ के करते हैं प्रोग्राम।
0: पंडित जी, यदि आपको किसी भी उस्ताद, चाहे जीवित हो या दिवंगत, के साथ तबला बजाने का अवसर मिले तो वह कौन होंगे और किस ताल में आप बजाओगे?
1: देखिए, तालों का तो कोई फिक्स नहीं होता है, वहाँ बजाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, जिसके साथ मैंने बजाया भी, बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, जो कि बड़े से बड़े उस्ताद, यानी कि पंडित बिरजू महाराज जी हो गए, किशन महाराज जी के साथ भी बैठा हूँ, जाकिर भाई के साथ भी बैठा, उसके बाद फिर क्या नाम है, साथ बैठना उठना बजाना गाना सब हुआ है, शाहिद भाई हो गए, राजन भाई, साजन भाई, दुनिया भर के सारे लोगों के साथ गिरजा।
0: पर अगर आपको किसी एक को चुनना है तो आप किसको?
1: अभी तत्काल में तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार गा बजा रहे हैं, क्लासिकल में अगर चाहिए तो डांस में चाहिए, तो सब में अलग अलग फील्ड के लोग हैं
0: जी।
1: अब तो किसी एक को मैं पर्टिकुलर तो कैसे नाम दूं, तो सब दूसरे के लिए अन्याय हो जाएगा।
0: आपका पर्सनल फेवरेट कौन है?
1: पर्सनल फेवरेट में तो ऐसे नहीं करूंगा, सभी हमारे फेवरेट है। देखिए, थोड़ा सा कलाकारों में क्या सबसे मिल के रहना पड़ता है, क्योंकि हमको डांस के साथ भी संगत करना है, गाने में भी करना है, इंस्ट्रूमेंट में भी करना है, फोक में भी करना है, गजल में भी करना है, ठुमरी में भी बजाना है।
0: जी जी,
1: इसीलिए किसी एक को तो नहीं कर सकता मैं, हम सबके साथ बजाना चाहेंगे।
0: हाँ, तो क्या बजाएंगे आप? तब कौन से ताल में?
1: कोई भी ताल में शुरू हो जाए।
0: हाँ, तो आपका फेवरेट ताल कौन सा है?
1: देखिए, तीन ताल तो तालों का राजा है।
0: अच्छा,
1: 16 मात्रे का ताल है, इसमें की चार विभाग होती है, अभी चार चार के
0: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार।
1: तो ठीक।

0: अच्छा भैया, को एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ।
1: जी जी पूछिए।
0: तो जब आप तबला नहीं बजाते तो आप कैसा संगीत सुनते हैं?
1: संगीत सुनने के लिए देखिए क्या है कि तो आजकल मैं यंग बच्चे भी बहुत अच्छा अच्छा बजा रहे हैं।
0: हाँ।
1: और मैं गायन ज्यादा सुनता हूँ और इंस्ट्रूमेंट।
0: अच्छा,
1: ये दो चीज हमको बहुत पसंद है।
0: हाँ। तबला के अलावा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है?
1: हमको देखिए सितार बहुत पसंद आता है।
0: अच्छा,
1: सितार सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और आपको चीज बता दूं मैं, तबला बजाने से क्या फायदा है? तबला जब भी कोई भी विद्यार्थी सीखता तो जितना भी बॉडी के एक्यूप्रेशर्स पॉइंट है सारे फिंगर में है।
0: अच्छा,
1: तो तबला बजाने से सारे एक्यूप्रेशर्स होता है। तो तबले वाले भी मरने वाले सब मर रहे हैं। आयु जब से पूरा हो जाएगा, सांस जब जिसका लिखा है जितना उतना जिएगा, मगर जब तक है तो आनंद में रहेगा क्योंकि सारा एक्यूप्रेशर्स होता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और संगीत में मैंने नहीं देखा कि किसी भी चीज में इस प्रकार से एक्यूप्रेशर होता। तबला और पखावज दो चीज ऐसा है जिसमें कि।
0: तो आपके हाथ के लिए कोई विशेष प्रकार का कोई आप एक्सरसाइज करते हो अगर तबला बजाना है तो?
1: कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जो रेगुलर रूटीन है, थोड़ा सा बॉडी वार्म अप करना, चलना, प्राणायाम करना, योगा करना, ये करना, इतना बहुत है अभी इस उम्र में, इतना बहुत है।
0: आपके छात्रों को क्या आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं? मतलब ये जो आपके उंगलियां है उसको कैसे संभालना है, इसके लिए कुछ आप ट्रेनिंग देते हैं?
1: उंगलियों के लिए क्या है कि बहुत ज्यादा हुआ तो भाई कायदों का अभ्यास करो
0: जी,
1: मध्य स्पीड में करो, न स्लो न फास्ट। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो बहुत स्लो करिएगा तो फायदा नहीं होगा बॉडी में, और बहुत फास्ट करिएगा तो बॉडी पर असर भी करेगा। इसीलिए इतना स्पीड से करिए, चल भी रहे तो एकदम धीरे धीरे चलिएगा तो बॉडी में कोई असर नहीं करेगा।
0: अंत में भारत में तबला का भविष्य

0: आपको कैसा लगता है?
1: भारत में तबले का भविष्य नंबर वन पे है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
0: अच्छा,
1: जिसमें तबला तो त से ताल, मेरा खुद का सोच है, त से ताल, ब से बोल, ल से लय, ये तबले के अंदर तीनों चीज का समावेश है। तबला मतलब प्राण है संगीत का, तो इसका तो भविष्य उत्तम है ही, अगर प्राणी नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा?
0: तबला के बिना संगीत अधूरा है। तो इसी बात के साथ नकुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए आकाशवाणी के स्टूडियो में और इस अवसर पर आपने अपना ये मूल्यवान जो भी आपका ज्ञान था जो हमारे साथ बांटा, उसके लिए आपके हम आभारी हैं।
1: धन्यवाद उत्कर्ष भाई, आपने बुलाया और सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम, कोटि-कोटि वंदन।
0: सूर संगात कार्यक्रम में हमने आप संभाली रहा था पंडित नकुल मिश्रनी मुलाकात, प्रसारण आकाशवाणी अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केन्द्रों पर करवामां आव्युं।

0: બપોરનો એક થવા આવ્યો છે. સાંભળેશો દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં કનકલતા. देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है. पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे. ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था. एक रिपोर्ट.
2: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया. इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था. इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ. भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया. गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई. इसमें श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे. इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं. पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाशनाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है. मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा. तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की. बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था. कल भी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी विधायकों की सूची तथा कांग्रेस का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था. इस समय उन्हें बहुमत के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है. वीसी के नेता थिरु मावलन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी. उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं. वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें. कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं. केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है. वे इस समय चेन्नई में हैं. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे कभी तृणमूल सरकार की भय के राजनीति के आगे नहीं झुके. श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया. ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया. राष्ट्रपति तो लाम आज महाराष्ट्र

0: जय भारती कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी का अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज केंद्रों से किया गया। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में। जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे आपातकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल

0: मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बैनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्य विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ER News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरेरकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्तमान में भारत स्थिरता का अड़िग स्तंभ है और यह साझा जल क्षेत्रों में त्वरित संकटकालीन सहायता और सुरक्षा की गारंटी देता है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में 10वें हिंद महासागर संवाद को संबोधित किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का किया। सेमीफाइनल में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत की टीम का सामना चीन से होगा। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिन की भागदौड़ और बेचैनियों को अगर रात का आसरा न हो तो जिंदगी ख्वाब देखने को भी तरस जाती है। ख्वाब के प्याले से होकर नींद जब आंखों में पिघलती है, बिखरी हुई रात आसमां से यूं आहिस्ता आहिस्ता उतरती है। मैं आंखें बंद करती हूं, लगता है मैं किसी खूबसूरत सपने में जी रही हूं। ओह, ये रात बहुत हसीन है, तुम्हारे पास होने से ये सपनों की रात बन गई है जैसे।

कभी कभी आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस आते हैं तो आपको सोने नहीं देते, लेकिन प्यार में डूबी मेरी अंखियां सिर्फ तुम्हें तलाशती हैं। सारा दिन बेचैन रहती हैं, तुम्हारे कदमों की आहट की तलाश रहती है इन्हें। चांदनी रात में खुशबूदार फूलों का मेरे जूड़े पर गजरा सजाना, आह आज भी रूह में महकता है तुम्हारा वो अंदाज़े मोहब्बत निभाना।

रात की खामोशी में जब तुम मेरे साथ होते हो तो लगता है जैसे खुदा ने मुझे अनमोल पल उपहार में दिए हैं। सिर्फ तुम्हारी इबादत के खाब के साथ तुम्हारे आगोश में हूं अंतिम पड़ाव जीवन का। ओह, कितनी रूहानी है ये प्रेम की अनुभूति।

है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

रानी नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं संगीतकार वनराज भाटिया की फिल्म भूमिका के इस गाने के साथ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वित्री कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरला में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट जीती है। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल से भेंट की। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि दोनों नेताओं ने श्रमिक कल्याण और रोजगार के लिए सशक्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए सहयोग पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्री रामफल ने भारत के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के बारे में विशेष रुचि दिखाई है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमकुम मोहोत की टीम का सामना चीन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि यह सृष्टि एक परिवार है। सेवा, करुणा और परोपकार हमारे जीवन के मूल संस्कार हैं। रेड क्रॉस संस्था इन्हीं मानवीय मूल्यों का व्यवहारिक स्वरूप है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की गुजरात शाखा के अध्यक्ष के रूप में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस की पूर्व संध्या पर गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। 8 मई रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिवस है और इसे पूरे विश्व में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिटी इन ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता में एकता, रेड क्रॉस की इस वर्ष की यह थीम है। यह अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि आज विश्व अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, संघर्ष और सामाजिक असमानताएं, ऐसे समय में यह विषय हमें याद दिलाता है कि हम पहले मानव हैं। जब मानवता एकजुट होती है तब हर संकट का सामना संभव हो जाता है। रेड क्रॉस के स्वयंसेवक इस भावना के सच्चे वाहक हैं। वह बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हर पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना उनका धर्म है। मुझे गर्व है कि गुजरात रेड क्रॉस निरंतर सेवा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है कि स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में गुजरात समग्र भारत में अग्रणी है। हर वर्ष 2 लाख से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित करना अपने आप में सेवा का एक महान उदाहरण है। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। आपदा प्रबंध के क्षेत्र में 30,000 से अधिक प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की तैयारी समाज के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्राथमिक उपचार और CPR प्रशिक्षण के माध्यम से आम नागरिकों को जीवन रक्षक कौशल सिखाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। रेड क्रॉस द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र, डेंटल क्लिनिक, पैथोलॉजी सेवाएं, फिजियोथेरेपी केंद्र, कृत्रिम अंग सेवाएं और कैंसर स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का उत्कृष्ट प्रयास है। रेड क्रॉस द्वारा जलधारा प्रकल्प भी अत्यंत प्रेरणादायी है। भीषण गर्मी में प्यासे लोगों को पानी उपलब्ध करवाना केवल सेवा ही नहीं बल्कि सच्ची मानवता है। यह भारतीय संस्कारों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि रेड क्रॉस के सभी सदस्य और स्वयंसेवक इसी प्रकार समर्पण, निष्ठा और सेवा भावना के साथ समाज की सेवा करते रहेंगे। मैं गुजरात की जनता से भी आग्रह करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में रेड क्रॉस से जुड़ें, रक्तदान एवं अन्य सेवा प्रकल्पों से जुड़ें और इन पुण्य कार्यों में सहभागी बनें। आइए

0: राष्ट्रपति तोलाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
3: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं इसमें हमको बांग्लादेश के सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में

0: बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
2: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सिंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parties on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing the 40-year-old system. Minister Ashwini Vaishnaw directs officials to ensure smooth transition. President of Vietnam, Tho Lam, emphasizes his country and India.

0: The commitment of India to safeguard every inch of its territory, be it land, air or water. The commitment to track and hunt down terrorists came directly from the Prime Minister.
1: ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
0: Every missile that was fired carried the sole objective of punishing the perpetrators of terror. At 1:44 a.m. on 7th of May, the government announced that it had hit the terror targets across the border. The exact words read,
2: "A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, 9 sites have been targeted.
0: 100 terrorists were killed in the strike." Immediately after the information was released by the government, news was broadcast by Akashwani as well.
3: इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई की बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है।
4: Indian Armed Forces launched Operation Sindoor post-midnight, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.
5: भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया।
6: Indian Army carries out military operation Sindoor on 9 terror targets of Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir.
0: Foreign Secretary Vikram Misri, while briefing the media about the operation, announced that India's response was focused, measured and non-escalatory in nature.
7: Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure.
0: What followed was unprecedented in the history of the nation. India struck again and reached hundreds of kilometers into mainland Pakistan without even crossing the border. Defense Minister Rajnath Singh, while speaking about the operation, said,
8: "हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावल पिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
0: India's retaliatory response was unimaginable for the enemy. It was triggered by the deadly Pehelgam attack. On April 22nd, terror struck Pehelgam. Pakistan-backed attackers stormed a village, asked people their religion and killed them, resulting in the death of 26 people. It was a clear attempt to incite communal violence. This marked a shift from cross-border attacks to dividing India from within. In response, India launched Operation Sindoor to destroy the terror bases behind the attack. But Pakistan hit back harder. Over the next week, it used drones and shelling to target religious sites, the Shambhu Temple in Jammu, the Gurudwara in Poonch, and the Christian convents were attacked. These were not random strikes. These were part of a plan to break India's unity. To safeguard the honor of the nation, its military prowess roared. 11 major air bases were targeted.
9: Main Colonel Sofia Qureshi, POJK, ke targets main aapko batana chahungi. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद,

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है।

0: तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जैसा कि हमने आपसे कहा, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं प्रेम धवन को। प्रेम धवन की शख्सियत के कई पहलू रहे हैं। वो गीतकार रहे, संगीतकार रहे, यहां तक कि उन्होंने कुछ फिल्मों की कोरियोग्राफी भी की है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी की कहानी। इसके लिए हमें चलना होगा साल 1923 में अंबाला शहर में। अंबाला शहर में थे एक जेल सुपरिंटेंडेंट जिनके घर 13 जून 1923 को एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक आगे चलकर प्रेम धवन के नाम से विख्यात हुआ। प्रेम धवन के पिता जेल सुपरिंटेंडेंट थे और कुछ ही दिनों में उनका तबादला हो जाया करता था, इसलिए प्रेम का बचपन कई शहरों में बीता और शहर शहर भटकते हुए परिवार का कारवां पहुंचा लाहौर। तब तक प्रेम धवन कॉलेज जाने की उम्र में पहुंच चुके थे। मशहूर लाहौर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। यहां उनके सहपाठी थे इंद्र कुमार गुजराल और साहिर लुधियानवी। आई के गुजराल आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने और साहिर लुधियानवी एक जाने माने गीतकार। ऐसे जागरूक साथियों का साथ मिला और प्रेम धवन का रुझान युवा राजनीति में हो गया। उन्होंने उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जुट गए। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई के लिए चेतना जगाने का काम नौजवान करते थे। प्रेम धवन पंजाब में इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के बैनर तले प्रेम धवन अपने साथियों के साथ गांव-गांव, शहर-शहर जाते नाटक और गीत संगीत के जरिए आजादी के लिए चेतना जगाते, लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा देते और इस तरह एक दिन भारत आजाद हो गया।

प्रेम धवन की दिलचस्पी इप्टा के हर पहलू में थी, संगीत में, गीत में, यहां तक कि नृत्य में भी। उन्होंने पंडित रविशंकर से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। उन दिनों में वे पंजाबी में गीत गाया करते थे। यही वो दौर था जब रविशंकर के भाई मशहूर नर्तक उदय शंकर के साथ ही शांति वर्धन से प्रेम धवन ने शास्त्रीय नृत्य की तालीम ली। उन दिनों में वो डांस ट्रूप का हिस्सा हुआ करते थे। आगे चलकर प्रेम धवन मुंबई आ गए। उन दिनों के मशहूर संगीतकार खुर्शीद अनवर ने प्रेम धवन को अपना सहायक बना लिया। साल 1946 में प्रेम धवन की शुरुआत हुई बतौर गीतकार फिल्म पगडंडी के जरिए। सन 1948 में प्रेम धवन ने खेमचंद प्रकाश के लिए मशहूर फिल्म जिद्दी के गाने लिखे। आपको बता दें, जिद्दी वही फिल्म है जिसमें किशोर कुमार ने अपना पहला पार्श्व गीत गाया। हालांकि वो गाना जज्बी ने लिखा था, मरने की दुआएं क्यों मांगू, लेकिन इसी फिल्म में प्रेम धवन का लिखा लता मंगेशकर का गाया राग छाया नट पर आधारित ये गाना बेहद लोकप्रिय

0: मर्जी
1: हमारी मर्जी,
0: तुम्हारी तो हमारी भी यही है मर्जी। हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी।
2: सलील चौधरी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है प्रेम धवन ने। सन 1955 में आई फिल्म तांगे वाली और इसका ये

0: कोई ना,
1: एक की मैं कुफर तो लिया
0: कोई ना,
1: एक की मैं जहर को लिया
0: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना, ओ हट के पलागी बच के
2: सन 1961 में प्रेम धवन ने फिल्म काबुलीवाला का ये नायाब गीत लिखा।

सलील चौधरी के लिए प्रेम धवन ने फिल्म आवाज के गाने भी लिखे। अब बात करते हैं प्रेम धवन और हिंदी फिल्म संगीत जगत के बेहद वरिष्ठ संगीतकार अनिल बिस्वास की जोड़ी की। सन 1951 फिल्म तराना, तलत महमूद का ये गाना।

सन 1953 में अनिल बिस्वास ने कई रागों पर आधारित एक गाना बनाया जो रागावली कहलाता है। फिल्म हमदर्द का ये गीत मन्ना डे ने गाया। इसके बोल प्रेम धवन के थे।

प्रेम धवन और रवि ने हिंदी फिल्म संगीत जगत के कुछ बेमिसाल गाने दिए हैं। रवि की पहली कामयाब फिल्म 10 लाख का ये गाना।

0: जग जग ले दिल दुबा।
1: फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत जो हर पिता की आंखें नम कर देता है।

0: धवन की शख्सियत के कई पहलुओं में से एक था उनका संगीतकार वाला पहलू। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में संगीत नहीं दिया, गिनी चुनी फिल्में हैं उनके संगीत निर्देशन में। प्रेम धवन के दोस्त और मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने जिद करके फिल्म शहीद के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी प्रेम धवन को सौंपी।
1: जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी

0: ये सन 1965 की बात है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रेम धवन ने शहीद भगत सिंह की माँ से मुलाकात की। ये उनके लिए बहुत जज्बाती अनुभव था और उन्होंने इस यादगार मुलाकात को एक गाने में ढाल दिया और वो गाना है मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गाना।
1: तू न रोना के तू है भग...

0: फिल्म शहीद के बाद प्रेम धवन ने पवित्र पापी फिल्म में संगीत दिया। इस फिल्म के ज्यादातर गाने किशोर कुमार की आवाज में थे।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला।

में हैं जिनके हीरो रहे हैं तारा सिंह। इन फिल्मों के नाम हैं वीर अभिमन्यु, किसान और भगवान, मेरा देश मेरा धर्म, भारत के शहीद। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रेम धवन ने नृत्य की तालीम भी ली थी और फिल्म संसार में जब जब मौका आया उन्होंने कोरियोग्राफी की। सन 1949 में फिल्म सिंगार के लिए उन्होंने नर्तकी कुक्कू को कोरियोग्राफ किया था। फिल्म नया दौर के इस गाने का नृत्य निर्देशन

0: अलावा प्रेम धवन ने आरजू, धूल का फूल, वक्त और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्मों के लिए नृत्य निर्देशन किया। जब जब मौका लगता प्रेम धवन फौजियों के पास जरूर जाते। जब अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने अजंता आर्ट्स के जरिए फिल्मी सितारों के एक ट्रूप को फौजियों के पास पहुंचाया और उनके लिए कुछ कार्यक्रम किए, तब लद्दाख और नाथुला की यात्रा में प्रेम धवन उनके साथ थे। अपने बैनर त्रिवेणी पिक्चर्स के जरिए प्रेम धवन ने सामाजिक मुद्दों पर कई डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण किया। फिल्म संसार में योगदान के लिए सन 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। एक बड़ी ही दिलचस्प घटना है। अभिनेत्री सुरैया अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म का नाम था मोती महल और हुआ यूं कि स्टूडियो आते वक्त उनकी गाड़ी बिगड़ गई और वो शूटिंग के लिए बेहद लेट हो गई। जब वो शूटिंग के लिए फ्लोर पर पहुंची और उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि उनकी गाड़ी बिगड़ गई थी, इस वजह से वो लेट आई। उफ, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में। बस प्रेम धवन ने इस घटना को गाने में ढाल दिया और ये गाना सुरैया ने ही गाया।
1: कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर रस्ते में, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में।
0: आपको बता दें कि 7 मई सन 2001 को प्रेम धवन ने इस असार संसार से अलविदा कह दिया।

0: प्रेम धवन एक बेमिसाल कलाकार, एक नायाब गीतकार, एक अद्भुत संगीतकार और प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी प्रेम धवन को हमारा नमन। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मेरी तन्हाइयों को अपनी हंसी उधार दे दे, मेरे सूने लम्हों को, मेरी तन्हाइयों को अपनी हंसी उधार दे दे, मेरे सूने लम्हों को अपना एक इकरार दे दे। मैं क्या दे पाऊंगा तुझे इस मोहब्बत के सिवा, बस तू मुझे अपना बना ले, मुझ पर ये एक एहसान कर दे।

अकेला छोड़कर ए मेरी जान, मेरी हर धड़कन तुझसे ही है, ये बात तू मान। अगर जाना ही पड़े तो वादा कर जल्दी लौट आएगी। तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है, यूं देर तक मुझे ना तड़पाएगी।

चांद खिड़की पे ठहरा है तेरी राहों की तरह, और रात खामोश है मेरे जज्बातों के साथ। नींद आंखों से कोसों दूर भटक रही है, और तू याद आ रही है हर एक धड़कन के साथ। ओ हो हो।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। ना कल की फिक्र, ना आने वाले पल का हिसाब, जो मिला उसी में ढूंढ लिया हर बार कुछ खास। हवाओं के संग बहते हुए जीना ही उसूल बना लिया। जैसी भी मिली जिंदगी उसे वैसे ही हंसकर गले लगा लिया।

चेहरे की लकीरों में भी नूर सवसता है। हर गुजरा हुआ लम्हा तुझ में फिर से हंसता है। वक्त चाहे जितना भी सफर तय कर ले, पर तू आज भी दिल को पहली मोहब्बत सा लगता है।

तेरे रास्तों से हर कांटा चुन लूं मैं, तेरे हर ख्वाब को अपना बना लूं मैं, तेरी हर खुशी पे अपनी दुनिया लुटा दूं मैं, तेरे हर गम को हंसकर अपना बना लूं मैं। बस एक अर्ज है दिल से, उम्र भर साथ निभाने का वादा कर दे।

क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।